नमस्कार, 4EB के ग्लोबल प्रोग्राम के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सबके वीकेंड की अच्छी शुरुआत हो चुकी होगी, बच्चे भी टर्म ब्रेक का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस भक्ति गीत से।

जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में कहा था कि दिल खोलकर दान देने से मन को संतुष्टि और शांति मिलती है, परंतु सच्ची खुशी और शांति मिलती है अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ने के बाद। चलिए कहानी के माध्यम से आपको यह बात बताती हूँ। पुराने समय में एक महादानी राजा हुआ करते थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। उनके द्वार पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था। राजा सबको दिल खोलकर दान किया करते थे। इसी स्वभाव और प्रसिद्धि से धीरे धीरे राजा के मन में अहंकार भर जाता है। एक दिन एक संत उस राजा के दरबार में आता है। तब राजा बड़े गर्व से कहता है, गुरुदेव, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। संत ने तुरंत राजा के अहंकार को भांप लिया। संत ने अपना कमंडल आगे बढ़ाते हुए राजा से कहा कि इसे सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने उस छोटे से

कमंडल को देखा और हंसते हुए उसमें सोने के सिक्के डाले, परंतु सिक्के अंदर गए और लुप्त हो गए। राजा सिक्के डालता रहा परंतु कमंडल नहीं भरा। तब राजा ने संत के आगे हाथ जोड़कर इस रहस्य के बारे में पूछा। तब संत ने कहा, यह कमंडल हमारे मन का प्रतीक है। हमारा मन कभी नहीं भरता है। सच्चा सुख परमदानी होने से नहीं बल्कि अपने अहंकार को त्यागने से मन की शांति मिलती है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। विनम्रता जीवन को सरल और सुखद बनाती है। चलिए सुनते हैं यह गीत फिल्म धुरंधर का।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका हार्दिक स्वागत है 4EB ग्लोबल के साप्ताहिक हिंदी प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आजकल सब तरफ धुरंधर फिल्म की चर्चाएं हैं। पिछले साल धुरंधर पार्ट 1 आई और अभी हाल ही में इसका दूसरा भाग भी आया। भारत में और विश्व भर में दोनों फिल्मों ने बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इन दोनों फिल्मों के गीत काफी प्रसिद्ध हुए हैं, परंतु डायरेक्टर आदित्य धर ने इस फिल्म में बीच बीच में काफी पुराने फिल्मी गीतों को नए अंदाज में सीन के मुताबिक ढाला है। आज के कार्यक्रम में उन्हीं गीतों के ओरिजिनल गीत मैं आपको सुनाऊंगी और उन्हीं गीतों के बारे में दिलचस्प बातें भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर पार्ट 1 में प्रयोग किए गए हवा हवा गीत के बारे में। यह गीत आता है बैकग्राउंड म्यूजिक में जब संजय दत्त के किरदार SP चौधरी असलम को दिखाया जाता है। 1970s के पर्शियन ट्रैक हवार हवार को इस गीत का रूट माना जाता है। 1980s में पाकिस्तान के एक जाने माने कलाकार हसन जहांगीर ने इसे हवा हवा गीत बनाकर गाया। धुरंधर फिल्म में इसके इस्तेमाल की परमिशन के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने हसन जहांगीर को $50,000 दिए। हसन जहांगीर का हवा हवा गीत भारत में चार्ट बस्टर था। फिर कुछ अन्य फिल्मों में इसके लिरिक्स वगैरह बदलकर गीत बनाए गए, जैसे गोविंदा के बिल्लू बादशाह में इसे जवां जवां इश्क जवां के रूप में गाया गया। सन्नी देओल के आग का गोला फिल्म में आया आया प्यार आया, संजय दत्त की फिल्म इंसाफ अपने लहू से में हवा हवा, 40-84 में हवा हवा, अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारक में हवा हवा, इन सभी में ओरिजिनल हवा हवा गीत के कई रीमिक्स्ड वर्जन्स दिखते हैं। चलिए अब सुनते हैं हसन जहांगीर का गाया ओरिजिनल हवा हवा गीत।

0: अभी आपने सुना ओरिजिनल हवा हवा गीत, चलिए अब थोड़ा सा रीमिक्स वर्जन भी सुन लेते हैं जिसे धुरंधर फिल्म में इस्तेमाल किया गया है।
1: किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज को।

0: यह संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर 2 वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अधिष्ठान प्रायोजक।
1: '81 की फिल्म अरमान का पॉपुलर डिस्को गीत रंबा हो, इसका इस्तेमाल किया गया है धुरंधर में रणवीर के हमसा के कैरेक्टर के बैकग्राउंड म्यूजिक में। ओरिजिनल गीत को गाया है उषा उदुप ने और कल्पना अय्यर और प्रेमा नारायण ने इस गीत पर डांस किया था फिल्म अरमान में। यह गीत उस समय के कई डिस्को हिट से प्रेरित होकर बप्पी लहरी ने बनाया था। 1980s में यह गीत सुपरहिट रहा जिसमें उषा उदुप और बप्पी लहरी साथ आए। अरमान के गीत को मुंबई के नटराज स्टूडियोज में शूट किया गया था परंतु लगता था कि गोवा में शूट हुआ है। बताया जाता है कि कल्पना अय्यर और प्रेमा नारायण ने फिजी आइलैंड से इस गीत के लिए अपने कॉस्ट्यूम्स लिए थे। धुरंधर के एक गन शूटिंग सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस गीत को रिक्रिएट किया गया मधुबंती बागची की आवाज में। मधुबंती कहती हैं कि उन्हें जब यह गीत ऑफर हुआ था तब वे थोड़ा हिचकिचाई थी क्योंकि यह उषा उदुप की आवाज में सुपरहिट गीत था। तभी संगीतकार शाश्वत सचदेव ने कहा कि यह गीत फिल्म धुरंधर में एक खास और मुख्य सीन में आएगा जहां कोई भी इस गीत को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। डायरेक्टर आदित्य धर ने उनसे कहा कि इस गीत को ऐसे गाओ जैसे किसी गन शूटिंग का हिस्सा हो। उषा उदुप कहती हैं कि किसी ने उन्हें इस नए गीत का लिंक भेजा और नए वर्जन को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे बताती हैं कि जब वे स्टेज शोज पर जाया करती थीं, तो रंबा हो गीत लोगों को इतना पसंद आता था कि वो 2-3 बार इस गीत को गाती थीं। तो चलिए अब सुनते हैं वही गीत अरमान फिल्म का ओरिजिनल रंबा हो।

धुरंधर फिल्म में हमजा अली और यलीना का इश्क दिखाया गया है और एक नाइट क्लब से बाइक पर हमजा यलीना को ले जाते हुए दिखाया गया है। उस समय बैकग्राउंड में बजता है एक रेट्रो सुपरहिट सॉन्ग जो कि मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आजा का रीमिक्स वर्जन बजता है बैकग्राउंड में। 1971 की फिल्म कारवां का हेलन पर फिल्माया यह कैबरे सॉन्ग तकरीबन सभी इंडियंस ने सुना ही होगा। उस समय संगीत सुनने का मेन सोर्स ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, जिसमें गानों को बजाने के लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो ने इस गीत को बजाने से मना कर दिया था क्योंकि इसके लिरिक्स थोड़े ऐसे वैसे थे और हैवी ब्रीदिंग भी अश्लीलता की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। और आज के रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स देखिए, कुछ भी और सब कुछ दिखाया जाता है। पिया तू गीत के कवि मजरू सुल्तानपुरी भी अपनी पंक्तियों के कारण लज्जित महसूस करते थे। उन्होंने आशा भोंसले से कहा भी था कि ये गंदे बोल तुम्हारी रेपुटेशन न खराब कर दे। लेकिन इन सब के बावजूद 1970s का यह कल्ट सॉन्ग बना और हेलन कैबरे की रानी बन गई। आशा जी की मादक आवाज हर ऐसे गाने के पीछे आई और हिट रही। 1972 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड इस गीत के लिए आशा जी को मिला। मोनिका ओ माई डार्लिंग और अन्य छोटे छोटे फीलिंग्स आर डी बर्मन की स्पेशल आवाज में है, जिसकी वजह से गीत और पावरफुल बना। ऐसे गीतों को गाते वक्त आशा जी ने हमेशा आर डी बर्मन जी से पूछा है कि सभी कैबरे स्टाइल गीतों के लिए मुझे चुना जाता है और दीदी लता मंगेशकर को हमेशा सुरीले और स्वीट गाने दिए जाते हैं, परंतु लता जी जहां मेलोडीज गाकर हमारे दिल पर छाई, वहीं आशा जी ने कैबरे सॉन्ग्स, डांस नंबर्स, गजल, सभी तरह के गीत गाकर हमारे दिलों पर राज किया। चलिए अब यह गीत सुनते हैं कारवां फिल्म का ओरिजिनल पिया तू गीत।

0: Right now, families across the Middle East are living through a devastating humanitarian crisis. Homes have been destroyed. Children are going without food, clean water, and medical care. The Emergency Action Alliance, a group of Australia's leading aid charities, is responding, but the need is overwhelming. Your support can help provide life-saving aid, food, water, shelter, and emergency medical assistance. To donate, go to emergencyaction.org.au or call 1300 939 000. Together, we can help families survive this crisis. Thank you.
1: आप सुन रहे हैं 4EB Global का साप्ताहिक हिंदी प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। धुरंधर फिल्म में जो रेट्रो गीतों का इस्तेमाल हुआ है बैकग्राउंड म्यूजिक में, मैं उन गीतों की बातें आपको बता रही थी। ऐसा नहीं है कि धुरंधर के अपने गाने नहीं हैं। कच्ची कली, साडा मासूम चेहरा वाला वेडिंग सॉन्ग और रहमान डकैत बने अक्षय कुमार का बलूचों द्वारा स्वागत वाला अरबी गीत इतना मशहूर हुआ, यह अंधाधुंध रील्स आपको बता सकते हैं। फिर रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ भी काफी कर्णप्रिय है। आज का मेरा टॉपिक है बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किए गए गीत और ओरिजिनल गीतों की दिलचस्प बातें आपको बताना। धुरंधर फिल्म के दूसरे भाग के बैकग्राउंड म्यूजिक में एक हिट गाना बजता है जब जसकीरत को पुलिस की वैन से अगवा किया जाता है। 90 के दशक में आई फिल्म दिल का गीत है हम प्यार करने वाले। यह गीत जो धुरंधर 2 में एक्शन सीक्वेंस का बैकग्राउंड स्कोर है। सच में संगीतकार शाश्वत सचदेव को की दाद देनी चाहिए जिन्होंने 90s के रोमांटिक हिट गीत को अपनी फिल्म के एक्शन सीन के पीछे डाला और जो हमें बुरा भी नहीं लगा। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म थी दिल, जिसके सभी गीत एक से बढ़कर एक हिट गीत थे। हम प्यार करने वाले गीत को गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। यह गीत यंग लवर्स का एक एंथम बन गया था 90s में। कुछ फ्लॉप मूवीज देने के बाद आमिर को दोबारा सुपरस्टार बनाने का श्रेय इस फिल्म को है। 1990 की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म बनी थी दिल। इस फिल्म में आमिर और माधुरी को लोगों ने बहुत पसंद किया, परंतु इसके बाद वे दोनों एक और मूवी में ही साथ नजर आए। तो चलिए अब यह गीत सुनते हैं ओरिजिनल सॉन्ग दिल फिल्म से।

एसपी असलम के एक्शन सीन के पीछे धुरंधर 2 में एक रेट्रो हिट बजता है, तम्मा तम्मा लोगे। 1990 की फिल्म थानेदार से यह गीत लिया गया है, जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है, और कोइंसिडेंटली एसपी असलम का किरदार अदा किया है संजय दत्त ने। ओरिजिनल तम्मा तम्मा गीत अफ्रीकन म्यूजिक से हेविली इंस्पायर्ड थी। इस गीत में डांस कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने। उनके काम की दाद देनी होगी जो उन्होंने संजय दत्त से बढ़िया डांस करवाया। अगर वह गीत आपको याद हो तो उसमें कुर्सी का इस्तेमाल कर एक डांस सीक्वेंस है। कहा जाता है कि उस सीन को करीब 50 बार लिया गया फाइनल टेक के लिए। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस गीत की शूटिंग चली। रात होते होते संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को कई ब्रूसेस आ गए, घुटने छिल गए थे, खून निकल रहा था इस इंटेंस डांस कोरियोग्राफी की वजह से। परंतु उनकी यह कड़ी मेहनत रंग लाई जब यह गीत चार्टबस्टर बना। बाद में कई सालों बाद बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट ने इस गीत पर डांस किया और अब धुरंधर में बीजीएम में आ गया। ओरिजिनल तम्मा तम्मा के कई डांस स्टेप्स माइकल जैक्सन के बैड नामक एल्बम से इंस्पायर्ड थे। संजय दत्त ने 16 दिन ट्रेनिंग की थी इस गीत में माधुरी दीक्षित के समांतर डांस करने के लिए। इस गीत से मिलती जुलती ट्यून हम फिल्म में बिग बी का चुम्मा चुम्मा दे दे का भी है। तम्मा तम्मा लोगे का कोई अर्थ नहीं बनता है, पर यह एक कैचिंग रिदमिक ट्यून है। इंटरनेट के एक आर्टिकल के अनुसार तम्मा तम्मा गीत के लिए जावेद जाफरी को थोड़ी जगह पर संजय दत्त के बॉडी डबल के रूप में लिया गया था, क्योंकि संजय दत्त इतने कठिन स्टेप्स नहीं कर पा रहे थे। चलिए वही गीत सुनते हैं, ओरिजिनल सॉन्ग फिल्म थानेदार का।

तो दोस्तों, अभी हमारा रेडियोथॉन का समय आ गया है। इस समय हम हमारे प्यारे श्रोताओं से हमारे इस नमस्ते वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए दान करने का आग्रह करते हैं। $10, $20, $50 किसी भी तरह का दान हमारे लिए बहुत उपकारी होगा। हमारा 4EB स्टेशन एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। हर भाषा के कार्यक्रम वाले अपने अपने श्रोताओं से रेडियोथॉन के दौरान दान करने का आग्रह करते हैं। हमारे शनिवार के FM और रविवार के ग्लोबल नमस्ते वर्ल्ड प्रोग्राम को इसी तरह चलाए रखने के लिए रेडियोथॉन कंट्रीब्यूशंस, मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस बहुत आवश्यक हैं। यदि आप अपना दान देना चाहते हैं तो कृपया मुझे फ़ोन या मैसेज कीजिए 0400907907 पर। आपका कंट्रीब्यूशन और नाम हमारे आने वाले कार्यक्रमों में अनाउंस किया जाएगा और आभार प्रकट किया जाएगा। चलिए अब आज के विषय पर लौटकर आते हैं। धुरंधर फिल्म में 2 अरबिक गीतों का इस्तेमाल हुआ है। धुरंधर पार्ट 1 में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना का बलूचिस्तान में स्वागत होता है, तब और दूसरा गीत धुरंधर 2 में हमसा अली बने रणवीर सिंह का बलूचिस्तान में स्वागत होता है, तब प्रयोग किया गया है। पहले गीत में अक्षय का डांस इतना फेमस हुआ कि वह बिना कोरियोग्राफी वाला स्टेप रील्स में और शादियों में उसी तरह से लोगों ने किया और रील्स को कई व्यूज भी मिले। दूसरे वाले गीत में डांसर्स द्वारा कोरियोग्राफी में ऊपर उछलते हुए जमीन पर गोली मारने वाला स्टेप काफी सराहा गया। चलिए अभी वही दोनों गीत थोड़ा थोड़ा सुनते हैं।

आज के कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय हो चला है। आशा है आज का कार्यक्रम और गीत आपको पसंद आए होंगे। इस महीने के बर्थडेज और एनिवर्सरीज वाले सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। रेडियोथॉन के लिए दान करने की बात भूलिएगा मत। मुझे फोन या मैसेज जरूर कीजिए। आशा है आप सभी के लिए आने वाले सभी दिन मंगलमय हो। हमेशा खुश रहिए, हंसिए हंसाइए, हमेशा मुस्कुराइए। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार अब आपसे अगले महीने मिलने का वादा करते हुए विदा लेती हूँ। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।